सोहिल करो तुम गावो मेरे निर्भउ का सोहिला हो वारे सोहिला सदा सुख होए रहा हो नित नित जीड़े संभाली अनदेख्या गा देवन हार तेरे दान कीमत ना पवै तिस दाते कौन समार संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन असिसणिया जो हो सब सुमेल घर घर एहो पहुचा सदरे नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से दे अवन

शोभ खंड ब्रह्मंडा के हम गरीब मस्ती प्रति हर राख राख बड बड़ा के जन नानक नाम आधार के कहे हर नामे ही सुख मंडा के राग गौरी पूर्वी महला पंजवा करो बिनती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला

मुंदा संतोख सरम पद चोड़ी ध्यान की करह बेपूत किंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश तयादेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश

अरूप है, अनूप है, अजू है, अपू है, अलेख है, अपेख है, अनाम है, अकाम है, अते है, अपे है, अजीत है, अपीत है, त्रमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीख है, फीक है, तंद है, बंद है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजहा है, अनंत है, महंत है,

तंत्रं नमो यंत्र यंत्र नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदान सर्व प्रणासी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद करता अधुर दर्दं अगं ओग हरता परम परम परमेश्वरं प्रोष पारं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयाल अशेदीय भेदीय नाम अशेदीय भेदीय नाम काम समस्त उपराजी समस्त स्थामं तेरा जोर चाचरी छन जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं जंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ति निदान्य नमस्त्वं नरेनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो सहस्राजे

खेल खेलन अंत को फिर एक दे भेव न जा नहीं जे बेद और कदेव रूप रंग न जात पात सो जा नहीं के जे तात मात न जात जा कर जन मन बहीन चकर बकर फिर

कि कर्मं करीम है कि सर्वं कलीं है कि सर्वं दलीं है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पहुन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेशा है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जा हो कि सर्वत्र पा हो कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेशा है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज एक सर्वत्र राज एक सर्वत्र सुख है सर्वत्र पोख है सर्वत्र त्राण है सर्वत्र प्राण है सर्वत्र देश है सर्वत्र पेशा है सर्वत्र मानी है सदैव प्रधानी है सर्वत्र जापी है सर्वत्र थापी है सर्वत्र पान है सर्वत्र मान है सर्वत्र इंद्र है सर्वत्र चंद्र है सर्वंकली में के परम वही में के अकल अलाम में के स्वाइब कलाम में के हुस्नुल वजू है

अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंद त्वे प्रसाद। सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, रसावलशन त्वे प्रसाद। नमो

निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न साकं सुरीके अमितो अमीके सदैवं प्रवाहे अजय हे अजाव हे भगवती छंद त्वे प्रसाद के जा हर जहूर है के आज हजूर है हमें सुनो सलाम है समाज तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसनल चिराग है के कामल करीम है के राज कर रहीम है के रोजी देहंद है के राज कर हिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है।

सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वं पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से है, गलखंड से है।

सदा सचदानंद सतरम प्रणासी करीम उलको निंदा समस्त निवासी अजायब बेपूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम उल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुक्ते स्वयं पव सुपंग सर्वदा सर्वजोगते

नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलम बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिशानत चीटी ते कुंचर सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।

कृपा दृष्टन जाहि निहारि होता किता तनक मैं हरि हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्व सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास तेता हिउ बारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोक तेरा। खड़ग केत में शरण तिहारी आप हादय लेह उबारी सर्व ठावर मोहो सहाय दुष्ट दोक ते लेह बचाय। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस्तु जप पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बाशत फल पावे सोई दुख न तो सह व्याप्त कोई अड़िल। सुनै गुंग जो जाहे सुरसना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निक न तिन नर के रह हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई।

दिब दृष्ट होई श्रवण हो मेरियो। साचे सुनने नू पठाए, साचे सुनने नू पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी। सच अलख वेडाणी ताकी गत कही ना जाए,

0: ठाकुर मख पूरो बैपूर नानक खाने बेनती दुलबाज पूरो पूर महला पहला
1: सच तम पर जानिए जज दे सचा होए कूड़ की मल त्रै तन करे हशा तोए सच तम पर जानिए जा सच तरे प्यार नाऊ सुन मन रहसियता पाए मोह।

साहेब जीओ दंडौत वंदना अनेक बार सर्व कला समरथ दोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ जेता समुंद सागर नीर

कृपाली दिन सुसहाए राम निज घर सुतड़िए पिरम जगाए राम नवहान नव धन शब्द जागी अपने पिर पाणिया ताज कूड़ कपट सुभाओ दूजा चाकरी लोकाणिया मैं नाम हर का हार कंठे साच शब्द निशानिया कर जोड़ नानक साच मांगै नदर कर तुद पाणिया जाग सलोनड़िए बोलै गुरबाणी राम जिन सुन मन अड़ी अकथ कहानी राम अकथ कहानी पद निर्बाणी को विरला गुरमुख बूझै ओ शब्द समाए आप गवाए त्रे पवन सोजी सूजै रह अति